दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्मको बचत। वाशिंग मशीन मा 6 केजी, टॉप लोड वाशिंग मशीन मा 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन मा 2 केजी सर्फ एक्सेल।

तरह का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: सुनिस न अहिले हाम्रो गर्नेमा
2: ए समय को साथ में जेतुल सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।

0: सुनिए ना, आइए हम लोग अनिमा 11 बजे के
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: सुनिए ना, आइए हम लोग दुई बजे का छा
1: समय को साथ में जेतुल सुनचादी पसल पोसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।
2: पहाडको सुख सुखे दिन
3: आमा मामा कति राम्रा गीत बजेका कता राम्रा राम्रा सन्देश आएका होइन यो त साँच्चै 105.4 मेरा हर्षको रेडियो आदि खोलेर रहेछ क्या हो।
4: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको बोक्लायो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला FM 105.4 मेगाहर्ज।

0: सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ।
1: पुनश फोनबाट समेत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क स्थान मल्ल फार्मेसी, वालिङ 8 तल्लो वालिङ, प्रोप्राइटर सुरेन्द्र मल्ल, स्वर्गीय पिता रामलाल मल्ल, फोन 063-44-051, मोबाइल 98-560-52-49।
0: स्मरण रहोस्, डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते शनिबार।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: नमस्कार तपाई यति बेला सामुदायिक रेडियो आदि खुला 101.4

बोलो श्री श्री शंकर भोलेनाथ को, बोलो श्री माता पार्वती को, हरे हे मेरो भगवान, मनुष्य को जिंदगानी बनी काली।